0: समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। यह अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत, स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया, नागरिक कर्तव्य निभाया गया, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आस पास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है।
1: যোগের উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন,
0: যোগ কেবল শারীরিক শ্রম কা সাধন নহি হ্যায়, যোগ কিসি এক আয়ু বর্গ কে লিয়ে সীমিত ভি নহি হ্যায়। ভারত মে হম জানতে হ্যায় অর দেখতে আয়ে হ্যায়, যোগ মানব জীবন কে কা চেতনা কে সাথ ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू इंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल।
1: ভাষণের পরেই সুসজ্জিত রেড রোডে শুরু হয় যোগা প্রোটোকল। রাস্তার উপর নানা রঙের ম্যাট পেতে সাদা পোশাকের অগণিত মানুষ অংশ নেন যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে ছিলেন পরিদর্শক ও পরামর্শদাতার ভূমিকায়। উৎসাহিত হন প্রত্যেকেই। কথা হল কয়েকজনের সঙ্গে।
2: আপনার নাম?
3: হ্যাঁ, শ্রাবণী দে। হ্যাঁ, কমলাঝুরি স্কুল ফর গার্লস থেকে আমি এসেছি মেয়েদের নিয়ে। পরিবেশটা খুবই সুন্দর। সকালে যখন আসছিলাম দেখছিলাম সমস্ত সরকারি, বেশিরভাগ সরকারি বাসেতেই সব স্কুলের স্টুডেন্টরা আসছে, দেখে ভীষণই ভালো লাগছিল। মানে পুরো একটা উৎসবের যেন আমেজ মনে হচ্ছে, এরকম খুবই ভালো লাগছে সকালবেলা এসে মেয়েদেরকে নিয়ে। না, এরকম তো আগে তো দেখিনি, কোনোদিন যোগও দিইনি, প্রথমই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম।
2: আমার নাম বাপ্পা সাহা, আমি হকি কোচ। এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে, পরিবেশ ঠিক আছে, খুবই ভালো। এই যে উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে যোগ দেয়া।

धाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़ जाते निधाड़।

0: এখন দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ। আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে পুনম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সে কতর কে আমির শেখ তামিম বিন হামদ আল থানি নে টেলিফোন পর বাতচিত কি। কতর কে রাস লফান ঔদ্যোগিক ক্ষেত্র মে হুই দুর্ঘটনা মে ভারতীয় নাগরিকো কি মৃত্যু পর আমির নে সমবেদনা ব্যক্ত কি আর ঘায়লো কে শীঘ্র স্বস্থ হোনে কি কামনা কি। প্রধানমন্ত্রী মোদি নে ঘায়লো কো চিকিৎসা সহায়তা উপলব্ধ করানে কে লিয়ে কতর কা আভার ব্যক্ত কিয়া। দোনো নেতাও নে পশ্চিম এশিয়া কি স্থিতি পর ভি চর্চা কি আর ক্ষেত্র মে শান্তি এবং স্থিরতা কে প্রয়াসো কা সমর্থন কিয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নে কাহা কি বদলতে বৈশ্বিক পরিদৃশ্য মে সুরক্ষা সহযোগ কো মজবুত করনে তথা আতঙ্কবাদ আর সাইবার সুরক্ষা সে লেকর উভরতি প্রৌদ্যোগিকিও তক কি সাঝা চুনৌতিও সে নিপটনে মে ব্রিক্স কি মহত্বপূর্ণ ভূমিকা হ্যা। প্রধানমন্ত্রী নে ব্রাজিল, রুশ, ভারত, চীন আর দক্ষিণ আফ্রিকা সহিত ব্রিক্স দেশো কে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সলাহকারো তথা বরিষ্ঠ সুরক্ষা অধিকারিও সে মুলাকাত কি। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট মে শ্রী মোদি নে কাহা কি ভারত কি ব্রিক্স অধ্যক্ষতা ব্যবহারিক সহযোগ কো বড়াওয়া দেনে গ্লোবাল সাউথ কি প্রাথমিকতাও কা সমর্থন করনে আর এক সুরক্ষিত অধিক সংরক্ষিত তথা সমাবেশী বিশ্ব মে যোগদান দেনে কা প্রয়াস করেগি। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे।